बिल्कुल वाज़ह है कि जिसने भी सभी मुमिनीन, मुमिनीन से मुराद सहाबा अकराम है रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन इस आयत करीमा में, और हर वो मोमिन जो उनकी इत्तिबा करने वाला है, लेकिन इस आयत में सहाबा अकराम ही मुराद है, और जिसने भी सहाबा अकराम के रास्ते के अलावा किसी और के रास्ते की इत्तिबा की तो उसने मुखालफत की, शदीद मुखालफत की, शिकाक किया अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका अंजाम क्या हुआ? जहन्नम वसाअत मसीरा। इससे साबित हुआ कि अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम की मुशाक्कत का इज्तनाब करना वाजिब है कि नहीं? वाजिब है। और इसे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, कौन सा है? इत्तिबा सबील المؤمنین। और इत्तिबा बगैर फहम के मुमकिन है? नामुमकिन है। जो कहता मुमकिन है, अब उसके जिम्मे सबूत है कि वह इत्तिबा को फहम से अलग करके सबूत पेश करके इत्तिबा फहम के बगैर मुमकिन है। और बात एहसान की जब होती है, सिर्फ इत्तिबा की नहीं, सुभान अल्लाह, देखें आप, अगर इत्तिबा की तो वह भी काफ़ी थी, लेकिन बात इत्तिबा एहसान यानी फहम तो लाजमी शामिल है उसमें। पांचवी दलील, अल्लाह ताला फरमाते हैं, قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। سورة الفاتحة آيات نمبر 6 اور 7। امام ابن القيم رحمة الله عليه فرماتے ہیں صراط مستقيم یہ وہ صراط ہے جو انبیاء کا راستہ ہے اس امت سے پہلے کا, और ये वो रास्ता जो सद्दीकीन शुहदा सालिहीन का रास्ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युति अल्लाह वर रसूल फऊलाइक मअ अल्लज़ीन अनअम अल्लाह अलैहिम मिनन नबियीन वस्सद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन वहसन उलाइक रफीका। सूरह निसा नंबर 69। इमाम साहब फरमाते हैं ये वो लोग हैं जो अहलु नेमत वल फज़ल हैं, और उनका रास्ता बिल्कुल दूर है अल्लाह ताला के गज़ब और गुमराही के असबाब से, क्योंकि ये सीधा रास्ता है और कमाल का रास्ता है जिसमें कोई भी टेढ़ापन नहीं है, सीधा रास्ता है, आसान रास्ता है और इस्तिकामत का रास्ता है। और सिरात मुस्तकीम को अपनाना फ़र्ज़ है, वाजिब है हर मुसलमान पर। अल्लाह ताला इसकी दलील देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون। سورة الأنعام نمبر 153। وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه فعل أمر صراط مستقيم की इतबा करना वाजिब है कि नहीं? वाजिब है। और इमाम साहब फरमाते हैं कि मुमकिन नहीं है कि सिरात मुस्तकीम की इतबा की जाए बगैर साबिकीन यानी सहाबा अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की इत्तिबा की, क्योंकि दोनों को जोड़ देना इहदीना सिरात मुस्तकीम सिरात, लफ्ज़ दो मरतबा सिरात का है कि दूसरा सिरात है वही है, वही है, बदल है, इराम में भी देखें आप वही सिरात है। इहदीना सिरात मुस्तकीम सिरात الذين انعمت عليهم, और लफ्ज़ इनाम का देखें आप, वक्त नहीं, मैं इसकी और भी बताता, मैं जो उसमें जो खूबसूरत जो अंदाज बयान है अल्लाह ताला का जल्ला शानहू इस अजीम आयत में, इनाम का लफ्ज़ एहसान का लफ्ज़ है देखें आप। तो फिर इमाम साहब फरमाते हैं कि सिरात मुस्तकीम जिसकी इत्तिबा करना फ़र्ज़ है, वाजिब है हर मुसलमान पर, उस पर चलना मुमकिन नहीं है जब तक कि सलफ़ सलात अनअमत अलैहिम के रास्ते को ना अपनाया जाए जिसमें सहाबा अकराम और सलफ़ सालिहीन शामिल है। तहरीर और तहरीम में, ईजाब में, जो भी शरीयत के मामले आते हैं सब में, तो वो इत्तिबा करता है अल्लाह के प्यार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत में, सुन्नत में, और सहाबा कराम की इत्तिबा करता है जब लोगों में आपस में इख्तिलाफ होता है, यानी अनबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन, अनबिया की इत्तिबा किस चीज़ में की जाती है? वह सरफ़ेरस आप सल्लम है, खातिमुल अंबिया मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिनकी शरीयत हर जिन इंस पर फ़र्ज है कि इत्तिबा करें, क्योंकि और नबी तो आने नहीं है ना, और दूसरी रिसाला तो आएगी नहीं, खातम रिसाला की खातमियत है, नबूवत की खातमियत हो चुकी है, तो अंबिया की इत्तिबा

याद रखें, खाने पीने में मैंने बाज आदाब बयान किए हैं। अगर पहले इल्म नहीं था, हम सब जाहिल हैं। ज़ाहिर इल्म हमेशा इल्म हासिल करने से ही आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न मन इल्म बित्तअल्लुम। पहले पता नहीं था जहालत की वजह से। आज हम अगर कुछ जान चुके हैं तो अभी अपने आप से अल्लाह ताला से अहद कर लें कि अल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा कि हम इन आदाब पर अमल कर सकें। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम अल मुरसलीन والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

हमारे ये जो काम किया है हमने, काम तो बहुत बड़ा अजीम काम है और हमारे जिम्मे ये काम दिया है कि अल्लाह ताला का घर बना रहे हैं। इसमें जाहिर है बशर ने बनाया है, बशर खुद कमजोर है, इसमें कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल फरमा, रब्बना तकब्बल मिन्ना। हालांकि अपनी मर्जी से बनाया था क्या? अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की मर्जी से ही बना था कि कितनी चौड़ा होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, हजरत सर कहां पर रखना चाहिए, कितनी हाइट पर रखना चाहिए, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है ये अपनी मर्जी से नहीं हुए, अल्लाह ताला के हुक्म से हुए। लेकिन देखें, अदब देखें और अल्लाह ताला की कदर देखें कि हुक्म की तामील भी हो रही है और साथ साथ आजज़ी और उनकी सारी की इंतहा भी। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो ये बेहतर सुनने वाला और जानने वाला है। सुनने वाला तो ठीक है, दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है, सुनते हुए दुआ भी कबूल फरमाते हैं। लेकिन अलीम का जिक्र यहां पे क्यों है? देखें, वहां पे समीउल बसीर है, यहां पर समीउल अलीम है। अल्लाह देख तो रहा है, अल्लाह ताला तो बेहतर जानता है कि हमने उसे किस तरीके से बनाया है, किस चाहत से बनाया है। हमारे अंदर को तो अंदर का नजर आता है कुछ, जो कुछ अंदर है, जो दिल में है, जो नियत है, जो मोहब्बत है, लगाव है काम से, वो नजर तो नहीं आता ना, वो तो महज एहसासात होते हैं, वो इल्म से पता चलता है। तो अल्लाह ताला जो वो कह रहे थे वो सुन भी रहा था, कबूल भी फरमाया, और जो चीज नजर नहीं आती, जो महज उनके जहन में थी, उनके दिल में थी मोहब्बत, वो चाहत, और जो कमी हुई थी उनसे, जो हमें नजर नहीं आ रही, वो अल्लाह ताला जान चुका है। इन्ना का अंत समीउल अलीम। इंशाल्लाह आखिर में बताऊंगा मैं कि इस दोनों में क्या फर्क है, समीउल बसीर कहां पे है और समीउल अलीम कहां पे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। यह दलाइल है कि अल्लाह ताला का नाम नामों में से, प्यारे नामों में से एक नाम है असमीय, सुनने वाला। समीय का मायना क्या है? समीय के मायने दो है, एक तो है सुनने वाला, और हम सब जानते हैं इदराक अल मसमूआत के सुनने वाला, और दूसरा है कबूल करने वाला, दुआओं को कबूल करने वाला। ये दूसरा मायना है समीय का। अल्लाह ताला सारे के सारे आवाजें सुनता है, हर जुबान में, हर जुबान को समझता भी है। अल्लाह ताला के यहां सिर और जहर दोनों बराबर है, सिर छुपी हुई बातें और जहर बयान करदा बातें। अल्लाह ताला के यहां छुपी हुई बात भी ऐसे अल्लाह ताला के इल्म में होती है, अल्लाह ताला ऐसे सुनता है जैसे कि कोई शख्स जोर से बोल के अल्लाह ताला को पुकारे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सवाउ मिनकुम मन असर القول ومن جهر به ومن هم مستخف بالليل وساهر بالنهار ومن هم مستخف بالليل وسارب بالنهار। सूरह الرعد आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं बराबर है अल्लाह ताला के यहां जो लोग अपने कौल को छुपा के बात करते हैं या बुलंद आवाज में बात करते हैं, चाहे वो रात के अंधेरे में छुपे हों या दिन के उजाले में सामने हों। अल्लाह ताला की समझ जो है इतनी वसीय है कि सारे के सारे आवाजों को एक ही वक्त में सुनता है। वला तख्तलिफ अलैहि अस्वात वला तश्तबिह, जितनी भी आवाजें हैं अल्लाह ताला एक वक्त में सबकी सुनता है और एक मखलूक की आवाज दूसरी में मिक्स नहीं होती और इश्तबाह भी नहीं होता कि यह आवाज किसकी थी या किसकी होगी। अल्लाह ताला सबकी सुनता है। जब मैं सबकी बात करूं, सिर्फ जिन, सिर्फ इंस की बात नहीं करता, सिर्फ जिन और इंस की बात नहीं करता, इसमें दरिंद और परिंद और हर जिंद मखलूक शामिल है। सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध। दरिंद और परिंद अल्लाह का जिक्र करते हैं, हमें समझ नहीं आती, अल्लाह ताला उनकी भी सुनता है, वो भी अल्लाह ताला को पुकारते हैं, क्योंकि उनके सिवा भी अल्लाह ताला उनके लिए अल्लाह ताला से कोई भी नहीं है। मुश्किल कुछ हाजत रहा, क्या जानवर को मुश्किल पेश आती है कि नहीं? चींटी को मुश्किल पेश आती है कि नहीं? वो प्यासी होती है कि नहीं? दरिंद और परिंद भूखे होते हैं।